0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनो और रेडियो पियम चुनके रे वेर क्वारो
0: पियम चुनके रे वेर क्वारो
1: बिमार मैं पाचो
0: बिमार मैं पाचो
2: यू आर लंग यू बी डू टेल आ लोका कामु पेने
1: इटी यूनो और रेडियो

0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनो और रेडियो पियम चुनके रे वेर क्वारो
0: पियम चुनके रे वेर क्वारो
1: बिमार मैं पाचो
0: बिमार मैं पाचो
2: यू आर लंग यू बी डू टेल आ लोका कामु पेने
1: इटी